0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 B23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हाँ पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: नई पॉलिसी आज से इम्प्लीमेंट हो गई है 1 अगस्त से, और इसमें लाइक लोन आएगा 0% पे बिना क्रेडिट चेक के. ग्रांट्स गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द ग्रांट्स बंद कर दिए हैं, बट लोन सिग्निफिकेंट अमाउंट का है, 0% पे है, और बहुत टाइम बाद रिपेमेंट स्टार्ट है. ब्याज दर 2.5% है साल का, 2.5 साल बाद जो पे करना स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 या 2.5%, दैट्स द ब्याज दर, नो क्रेडिट चेक.
1: अच्छा, 2.5 साल बाद शुरू होएगा जड़ा परसेंट लगना है, उस तो पहला 2.5 साल 0% इंटरेस्ट थे.
0: बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और विदाउट कोलैटरल. जैसे आपको बता रहा था, लाइन ऑफ क्रेडिट लेने गया बैंक में, तो $70,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी ले ली मेरी.
1: हाँ.
0: मेरा घर उठा लेंगे अगर पैसे नहीं दिए उनके. मैंने
1: हाँ.
0: मैंने कौन से पैसे मारने हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन उन्होंने साइन करा लिया कि भैया पर्सनल ये वो है ना.
1: हाँ जी.
0: मैंने सोचा यार, हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक फंडिंग आती है, लोन आता है, ग्रांट आती थी, चलो पहले.
1: हाँ जी.
0: लोन आ रहा है, उसमें कोई पर्सनल गारंटी है ही नहीं, ये बैंक वाले हमें बस लूटने में लगे. इसलिए आप स्किल डेवलप करें, गवर्नमेंट से फंडिंग हासिल करें, बैंक तो आपको लूटने के लिए बैठे हैं यहाँ पे.
1: हाँ, बिल्कुल. ये जो नवा प्रोडक्ट है जो तुम्हें लोन मिलना है, यह की जरिया कि सू मिल सकता है, कोई फैमिली का इनकम या की क्राइटेरिया की है?
0: हाँ जी, जो नया क्राइटेरिया है उसमें आपकी फैमिली इनकम लेस देन $90,000 है
1: जी?
0: आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, ऑन्टारियो में कहीं भी रहते हैं, एज लिमिट डजंट मैटर, पेंशन पे हैं डजंट मैटर. फैमिली ऑफ 4 का एस्टिमेट अगर हम लेके चलें, तो उनको 2 साल के कोर्स में हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फैमिली ऑफ 4 को अप टू $2 लाख की फंडिंग बन जाती है लोन के रूप में
1: जी.
0: उसमें से 40,000 तो कॉलेज को चला गया.
1: हाँ जी.
0: लोन में से ठीक $160,000 आपके खाते में ड्रेड गवर्नमेंट ने डाल देना है. 8 साल से काम कर रहे हैं, ये वो नहीं, जुआ नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा. आप ऑफिस आ जाइए, जितने केस देखने देख लीजिए
1: जी.
0: तो 1.5 लाख आपके अकाउंट में आ गए, 1.60 मोर्गेज साइज. और बाकी अगर आपके बच्चे लाइक छोटे हैं 11 साल से, तो उनकी 3200 पर किड की पर ईयर की ग्रांट गवर्नमेंट की है.
1: अच्छा.
0: मतलब हस्बैंड वाइफ पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे 11 साल से, तो हस्बैंड वाइफ को ग्रांट मिलेगी. मैं नहीं कह रहा बच्चे पढ़, उनके कॉलेज कोर्स कर रहे हैं, समझे, आराम से कोर्स करें, स्किल डेवलप करें, एजुकेशन लें, फंडिंग हासिल करें.
1: क्या बात है. तो ये सानू कितने आना पड़ेगा, की नंबर है, इस अलावा कोई होर चीज तुसी ऐड ऑन करनी होवे सरा जी?
0: हाँ जी, तो इसमें लाइक आसान से कोर्सेज हैं, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, और लाइक फंडिंग आपके खाते में आती है. हमारी फीस कम होने के बाद पहले भी 199 थी, पॉलिसी चेंज होने के बाद भी 199 है, दैट्स इट
1: जी.
0: कोई चलाकी कोई मीठी बातें नहीं है, साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे थे, छोट 0 कंप्लेंट, कोई मैं कह नहीं सकता. क्यों पैसे हम काम होने के बाद में, तो उल्टा लोगों ने 200 लोगों ने मेरे $200 देने हैं. अभी हम लिस्ट बनानी है, हमने अगले हफ्ते मांगना शुरू करना लोगों से. हमें टाइम नहीं अलग मांगने का, लास्ट बिजी थे हम 1-2 महीने से
1: जी जी.
0: तो इसलिए ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, कोई कुंडी कोई चाबी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है, ठा करके एलपी फीस बताते हैं. नंबर नोट करें आप हमारा, 437-264-31-75, 437-264-31-75. फंड हमने हमारी छोटी सी फीस शुरू में नहीं लेते सर, काम होने के बाद लेते हैं. फंडिंग किसके खाते में आ रही है? आपके खाते में, तो आपकी ईमानदारी चेक हो रही है. ऑफिस का एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, हरे डेयरी पे. आप ट्यूजडे आ सकते हैं, मंडे को मैंने बोला स्टाफ को, कहता छुट्टी चाहिए, मैंने कहा ले लो भाई इस बार.
1: नहीं ठीक है, ट्यूजडे तो तुसी जरूर तुसी पहुंचो. ते जेडे किड्स दी एज तुसी कोई मेंशन कीती है, बच्चियां दी उम्र, जे फैमिली दे विच ग्रांट या कुछ किवें किवें तुहानू मिल सकदे, कोई मेंशन कीता है बच्चियां दी एज किन्नी होनी चाहीदी है?
0: 11 साल से नीचे.
1: 11 साल से नीचे. अच्छा.
0: अगर आप मान के चलिए किसी के 3 बच्चे हैं, तो हाँ. मतलब अगर किसी के 3 बच्चे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी करा, ट्रिकी नहीं है, लाइक फोन पे जब आप एस्टिमेट, हम आपको एस्टिमेट देंगे फोन पे,
1: सिंपल तरीके से. जी जी जी जी,
0: सिंपल तरीके में आपको समझा देता हूँ. आपकी मतलब मान के चले आपकी फीस है कॉलेज की 10,000 एक साल की
1: जी.
0: तो अगर आपके 3 बच्चे हैं
1: जी,
0: तो आपकी $3200 पर किड ग्रांट आ रही है, तो मतलब आपकी फीस तो निकली गई बाहर बाहर.
1: अच्छा, $3200 पर किड पर ईयर.
0: बिल्कुल सही बोला, यस बिल्कुल सही पढ़ा आपने.
1: जी जी जी.
0: अब फीस निकल गई, अब आया आपको 2 लाख, तो 2 लाख का 2 लाख आपका ही लोन हो गया.
1: हाँ.
0: कॉलेज की फीस उसमें से कटी नहीं, अगर आपके 3 बच्चे हो गए 11 साल से नीचे. अगर 2 बच्चे हुए तो 6400, 10,000 में से 6400 तो ग्रांट नहीं कवर कर लिया ना. बाकी 3,000 2 लाख में से 3,000 माइनस करोगे तो कमी, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट?
1: बिल्कुल.
0: और 0% पे लोन है, 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट होती है. तीसरी बड़ी बात, जब पेमेंट स्टार्ट होती है 2.5 साल बाद, 15 साल में आप उसे लौटा सकते हो उस लोन को. चौथी बात, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

0: तो कितना जीरो, बाद में कितना 2.5% पूरे साल का, तो
1: कुछ भी नहीं है आप, बिल्कुल
0: कुछ भी नहीं है 2.5%, और बाकी लाइक आप 15 साल में उतारते हैं उसको, कोई चाबी नहीं है,
1: बिल्कुल
0: गवर्नमेंट फंडिंग के लिए बैंक नहीं कर रहा। नंबर नोट कर लें आप हमारा, 4374231375, नंबर अगेन 4374231375। मैसेज छोड़ दे, कॉल कर ले आपको कल, आपको हमारा ऑफिस कल भी लाइक स्टाफ आपको मेरे कांटेक्ट कर लेगा आपको।
1: क्या बात है, बिल्कुल जी, 4374231375 ते तुसी ज्यादा जानकारी ले सकते हो। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी 4374231375। सरां जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
0: थैंक यू,
1: तेरे बिना ना गुजारा है। नंबर अगला आ रहा है, नहीं बने नहीं टाइम, चलो कोई ना। 418 जी, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी, छोटे वीर की हाल है?
1: बहुत वधिया सर, तुहाडी वड्डे वीर दी कॉल आ गई, होर भी वधिया।
2: बस वधिया, ते ओ ऐ है भी मतलब बंदे ना याद रखना चाहिए अपना करंट, मतलब वर्तमान
1: जी,
2: भी हुण की कर रहे हैं भी, ना तो बड़ा फ्यूचर नु सोच के ते ना बड़ा पास्ट दी चिंता
1: जी,
2: एवं नहीं मन खराब करना चाहिए।
1: ता ही अंग्रेजी विच कहंदे है प्रेजेंट,
2: बस प्रेजेंट ओही, मैं पंजाबी च कहता चलो।
1: और प्रेजेंट ओही गिफ्ट भी हो जाता ना, प्रेजेंट दो मतलब हो जाते प्रेजेंट दे।
2: बहुत वधिया गलबात करदे हो तुसी, ते सोहना लगदा है, ते सारा मतलब खिड़ जांदा है थोड़ा जिहा, सारा सुनिए है ढाई मिनट का।
1: अच्छा
2: हां जी, ओहदे च सानू ये दसूगा प्रेजेंट आला भी ओह किवें हुंदा है।
1: अच्छा जी,
2: निक्के निक्के भाइयां दा प्यार किन्ना हुंदा, धर्मप्रीत
1: किन्ना दा जी, ये
2: धर्मप्रीत दा जी,
1: धर्मप्रीत दा।
2: हां जी, ते नाल तुसीं सुणोगे ओहदा म्यूजिक किन्ना सोहणा, निक्के निक्के भाइयां दा प्यार किन्ना हुंदा, धर्मप्रीत।
1: ला देने आ जी, जरूर ला देने सर,
2: बहुत धन्यवाद जी।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर,
2: लगदा बहुत, नहीं नहीं वधिया, सानूं वधिया थोड़ियां गल्लां बातां सारा सुन रहे आसीं।
1: क्या बात है, थैंक यू वीरे जी। मैं इत्थे आ जुड़ के माइक दे अगे तुहानूं बेशक देख नहीं रहा होणा, पर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: नहीं ओह ऐदां पता कि माइक आ गल सुन के बंदे ना चेहरा मेरा तां फिल्म जी बण जांदी है पूरे।
1: अच्छा हां, असीं ते फिल्म बनाउण नूं बैठे आ जी, दिखदा तां है नहीं बंदा, फिल्म ते जहन दे विच बण सकदी है, अपने जहन
2: नहीं, मैं उही कह रहा वी ऐदां दा बंदा बोल रहा इस तरह गल कर रहा आ फिल्म बण जांदी।
1: हां बिलकुल बिलकुल। तुहाडा नाम भाई जी?
2: सुखविंदर ढींसा।
1: ढींसा साहब बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, बहुत शुक्रिया,
2: काफी पहला तुहाडे नाल गल करदा है आपां,
1: तुसी बड़े टाइम बाद गल हुई है, पर तुसी अपने पूरे मतलब तुहाडा ही प्रोग्राम है जी।
2: नहीं नहीं कोई गल नहीं, लै वधिया सर, पता आ ला दिओ जरूर,
1: जरूर ला देने सर,
2: लब्बो
1: जरूर ला देने, लब लिया आपां लाइन अप करता,
2: ओरिजिनल लब्बो पर।
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, आप जरूर लग के ओरिजिनल ला देने, थैंक यू सर,
2: ठीक है छोटा वीर,
1: थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बिल्कुल जी, टॉपिक अज का विषय अज का बड़ा शानदार, बड़ा सौखा, सिंपल ईजी, तो यही है जीवन दे विच इंसान नू एक गल केड़ी याद रखनी चाहिदी है, सदा याद रखनी चाहिदी है। 905-673-3337 लोंग वीकेंड है, दारू पी के गड्डी नहीं चलानी, ए ते हर एक नू याद रहनी चाहिदी है। करंट जिवें बाई जी ने कहा, प्रेजेंट मूवमेंट दे उत्ते लोंग वीकेंड है, बंदे नू हुंदा भी कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं, पर मैनू ये पता नहीं, ये वर्ड मैनू चंगा नहीं लगता, जदों बंदा कहिंदा ना कोई चक्कर नहीं, उहदा मतलब हुंदा भी मैं परवाह नहीं करदा, भी मैं बेपरवाह उस चीज़ नू लैके, भावें उह चीज़ तुहानू पता भी गलत कर रहे हैं, बंदा कहिंदा कोई चक्कर नहीं, नहीं यार चक्कर बड़े पै जांदे आ, ते पता नहीं लगता जो चक्कर पैंदे आ, ते बंदा फिर बहुत चक्करां च घूम जांदा, ते गल चक्करां वाली आपां हुण ज्यादा ना उलझाइए। अगला जिहड़ा पहले ही गीत चल रहा सी उहनूं आपां कंटिन्यू करदे आ, तेरे बिना ना गुजारा है, तेरे बिना ना गुजारा है। आहा,

क्या बात है, बड़ा शानदार गीत यार, मजा आ गया सुन के। ते मैं लाइन सुन रहा सी विच, ते कहंदे है मोरां वर्गी तोरां तुरदी हिरनी वर्गी कुड़िए नी। ते मैं सोच रहा सी मोरां वर्गी तोरां तोर तुर रही है ते हिरनी वर्गी, ते दिमाग दे विच कन्फ्यूजन बड़ी हो गई भी यार, पता नहीं केड़े साहब दी किदां दी कुड़ी दी गल कर रहा है।

0: खरीदने के लिए आपको optical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5993 पर कॉल कीजिए। 9054567733 Alpha Optical, your vision is your business.
1: Since I last seen you, it's 9 days over here now.
2: We didn't have good news here. When COVID happened,
1: disaster.
2: Everyone had a rock business.
3: You can now make pizza in your backyard that you couldn't get.
4: लो जी कुमारी फिर अपना टेस्ट भी गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही का सिफ्ट कर लगे हैं, जरा सुन के सोने हो।
5: Abroad adopts Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.

महेंद्र गुण सपुर तेरे रहा पंच बेखा दी एक गरीबा राखा राखन हारे खेत कर है हर बहुत संताव है आया शरण तुहारे कर कर हारियो अनेक पौ पाती चोड़ कतहु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबेखाती सहज सोहेली बारी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्बाणी कर स्नान सिमर प्रभु अपना मन तन भये अरोगा कोट बिगन लाते प्रभु सरणा प्रगटे भले संजोगा प्रभु बाणी सब सुभाख्या गावह सुन हो पढ़ो नित पाई गुरपुरै पूरा किया रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बछल दयाला संता की पैर रखदा आया आद बिरद रत पाला हर अमृत नाम भोजन नित पहुंचो सर्व वेला मुख पाव जरा मरा ताप सपना का गुण गोविंद नित गाव सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की बड़ियाई सूरत माला बनवा सुख मंगल कल्याण सहायकम प्रभु के चरण निहारिया राखन हारे राखियो मारे सतगुर नाम उतारिया उबरे सतगुर की शरणाई जाकी सेव न बिरथी जाई रहा कर मह सुख बाहर पुर सूखा

से कभी अपने कृपा दानी आज पहर अराधो स्वामी पूरण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राख ले हो पाई मेरे को प्रभु आ गए अरदास जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा पेटियो मिटियो सगलिया देसा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला रूप मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरण पुरख विदाता रहाओ आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला।

संतो हर हर नाम ध्याई, सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरा नाम गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभु भए दयाला, दुख मिटया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उधरिया सब संसारो। मेरा सतगुर खवाला होआ, काज कृपा प्रभात दे राख्या, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ।

0: कार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: सूर्य कवच
2: अस्य श्री आदित्यवचसमुद्रमहामुद्रस्य स्थितवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः यो देवता घृतं सूतुं शक्तिः आदित्यं कीलं महादित्यप्रसाद सिद्ध्यते सूत्रमन्त्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा

ताभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्च सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

आप सभी श्रोताओं का धर्म संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है, तो सप्ताह को अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया, और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैक यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इन मॉडल पर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, आप उनके स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा, अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और उनका आप नंबर लिख लीजिए, 416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर लीजिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं एच के मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कुरियर डिपो अब आपके लिए गोर रोड पर मौजूद है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप मास्टर कुरियर डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिस्मा रोड मिसिसागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो, 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: तो चटनी लगी मेला समोसा फैक्ट्री
1: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल जो G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1135
2: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सारे।

या आपने बढ़िया बढ़िया गाने जो है आज़ादी वाले, वो आपको मैं हमारे प्रोग्राम से ही सुना देती हूँ। फिर पूरा दिन और कोई लोग बाकी बाद में उनके वो आते हैं, तो सबसे पहले हमें मौका मिलता है आपको सुनाने का सुलह सुबह दिवस फॉर एवर ड्रीम सॉन्ग।

0: सारे फूलों की राहों में सारे फूलों की यहाँ कहे सावन, यहाँ कहे सावन, बालों में खिलती है कलियां डालों में।
1: ये जो गाना है वैजयंती माला नया दौर फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से यह गाना है, लेट्स गो।
2: भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत दिखलाई, तारों भारत तो यूं चांद जाना मिलता, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जब कला, अपना भारत वो भारत है, नीचे संसार चला, संसार चला और बढ़ा, जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, फूले बसंती, बसंती चोला।

रंगने में हमारे गुलाब की गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का तोला।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए दिखाई

है तो एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली अगर किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो हैं दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोग अगर ये गाना लता जी का नाम अब ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत का पला, इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

यते सदा जन्मदत् नस्तिकालो जान सर्वानाश्रयते प्रभु इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वज्र पंचक।

कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ज्वाही संपूर्ण जगत विश्व बंध्यं महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानो त्वं कुलदेवी नमोऽस्तु ते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवम् त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोऽहम् आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मङ्गलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी।

ओम राम नमुष्टाभ्याम नमः ओम रीं कर्जनीभ्याम नमः ओम रूं मध्यमाभ्याम नमः ओम रीं अनामिकाभ्याम नमः ओम रूं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम कर्तकर्मिष्ठाभ्याम नमः अद अंगन्यासः राम हृदयाय नमः ओम रीं शिरसे स्वाहा ओम रूं शिखायै वशतः ओम रीं कवचाय हुम ओम रूं नेत्रत्रयाय

0: विशुद्ध बुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विंध्यवासिन्यै नमः। स्तुतिपाठं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि।
1: विश्वमूर्ते शुद्धे विरूपाक्ष विलोचने भीमरूपे

0: इस बार और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है अभिनंदन है सभी को नमस्कार सत श्री अकाल अदाब जय साई राम या अली मदद और आप सभी को हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद रखती हूँ कि आपने भी हर शहर में यहाँ पे कनाडा में इंडिया इंडिपेंडेंस डे सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है और हर जगह कोई सेलिब्रेशन जरूर हो रही है तो आप भी ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए और अपनी जो देशभक्ति है उसको थोड़ा जागृत करिए।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जिनको ये मालूम नहीं हो शायद मीनिंग वंदे मातरम का मतलब हमारी मातृ को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो यही इसका मतलब है। तो मैंने कल के प्रोग्राम में आधा जो अगस्त 15, 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली स्पीच थी उसको मैंने आधा कहा था कल, तो आधा आज मैं कहूँगी। तो आइए पहले आपको ये बड़ा प्यारा सा धुन सुनाते हैं।
1: तो पे सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं।

जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, बढ़िया आप बारबेक्यूज, आउटडोर फर्नीचर या फिर अपने घर का फर्नीचर वाला हुए काइंड बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस पे लेना है, राखी की स्पेशल सेल आपका फायदा उठाइए। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पे जाइए। अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने उनकी जो लोकेशन है आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को राखी की और इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं उनके पूरे स्टाफ की तरफ से। अब मास्टर कोलिजन दीपू की तरफ से, स्काई डोम की तरफ से, अगर आपने बढ़िया अपना कोलिजन का काम करवाना है, लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपकी खुशी की खबर आपके लिए ये है कि मास्टर कोलिजन दीपू गोर रोड पर मौजूद है लंदन में। तो आप वहाँ पर जाइए, अपनी कार वेंट आपको आपको ले बना के देंगे। और masterkolijandeepu.com पर जाकर आप और जानकारियाँ ले लीजिए। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुँचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-8004-16-6524-6704। तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। और आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 905-625-0055। आपने लाइव कुकिंग करवानी है, खाना ऑर्डर करना है, न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया पिज्जा रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट भी मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको अभी राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है 905-814-1750 पर कॉल कीजिए 9058141730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे बड़े जोर शोर से मनाएंगे आप सभी के साथ। बहुत कल से सेलिब्रेशन, आज पूरा दिन आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने आप को, तो आप भी खूब इंजॉय कीजिए। और ये जो अपने फॉरएवर जैसे कि ग्रीन सॉन्ग है जो, उनको सुनिएगा आप, सुनिएगा ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। संजीव कुमार और सुनील

0: मन गए अब है नहीं जाने हम हिंदुस्तानी
1: छोड़ो कहीं बातें सच की बात पुरानी।

हमको कितने ताजिक महल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको सजाने, अभी पलटना है रुख।

0: अपना हनुमान बनाए, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सब लोग से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग, अब है नई जान, हिंदुस्तान
1: हिंदुस्तानी। तो अब आपके साथ मैं जो आधी, जैसे मैंने कहा था कि आधी जो जवाहरलाल नेहरू जी की कायस वाली, उन्होंने पहली अगस्त 14, 1947 में उन्होंने ये पहली स्पीच बोली थी, तो उसी को मैं दोहराने जा रही हूँ। येट The turning point is past and history begins anew for us. The history which we shall live and act and others will write about. It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East. A new hope comes into being, a vision long cherished materialized. May the star never set and that hope never be betrayed. We rejoice in that freedom, even though clouds surround us and many of our people are sorrow-stricken and difficult problems encompass us. But freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. On this day, our first thought go to the architect of this freedom, the father of our nation, who, embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message, but not only we, but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their hearts of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courage and humility. We shall never allow the torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. Our next thoughts must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who, without praise or reward, have served India even unto death. We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers in their good or ill fortune alike. The future beckons to us, but whither do we go and what shall be our endeavor? To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. So we have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledges in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard, all of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India, with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage communalism for narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. To the nations and peoples of the world, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom, and democracy. And to India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal, and the ever-new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service. Quote-unquote. तो ये थे उनकी जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन पहली बार अगस्त 14, 1947 को. तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं. उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी. अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, आपको बढ़िया बढ़िया टीवी चाहिए, लेटेस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर आपको बारबेक्यू चाहिए, सोफ़ा बढ़िया सा चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंडरपर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन की ग्वालियर है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी जो राखी स्पेशल सेल है वो देखिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करिएगा. जी हाँ, तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए. 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं. तो अब अगर आपको कृष्णा वाटर गोल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप निशीव सेंट को कॉल कीजिए 519-546-1207 519-546-1260 पर आप कॉल कर सकते हो. और अब आपने किसी किस्म की भी आपने कलिजन का काम करवाना हो तो आप वहाँ पे चाहिएगा. आप किसी तरह का भी मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए खुशी की खबर है. अब लंदन में गोर रोड पे मौजूद है. तो मास्टर कलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो और आपका कार वैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं. बहुत सालों का उनका तजर्बा है. मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है. तो आपकी कार वैंड ट्रक को एकदम नए जैसा ही बना देते हैं. अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपके लिए कैनरा भर में मूव होने में आपके मदद करते हैं. तो आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना ट्रक बुक कीजिए 416-524-4416-524-6704. तो लेट्स गो टू दिस.

काल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कृष्टि निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने पाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दांव पेच से रखना नवाजता, दुनिया के दांव पेच से रखना नवाजता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न देखो ये तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए

0: तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रचना मेरे बच्चों संभाल।
1: आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संभाल घर संसार, और मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। और आप सभी को एक बार फिर से इस इंडिया की इंडिपेंडेंस 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एंजॉय कीजिएगा जो भी आपके शहर में एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे।

जा सकते नहीं, आजादी को हर गिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, ये नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है, मुस्कुरा अपने गोलियां अपने गोलियां, इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते।

0: आवाज के हम साथ चलते जाएंगे,
1: हम साथ चलते जाएंगे,
0: हर कदम पर जिंदगी बदलते जाएंगे,
1: बदलते जाएंगे,
0: अगर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन,
1: कोई गद्दारे वतन,
0: अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहरा।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।

0: कि ना ही मैं विरोध भी नहीं कर सकिया कि जिथे मैं वो काम मैनू चंगे नहीं लगते सी मैं स्वीकार नहीं कर सकया, परंतु मैं विरोध भी नहीं कर सकिया। फिर वो उन्होंने अगली गल लिखी कि मैं कदे किसी काम बदले पैसे नहीं ले। तो जिहड़ा सब तो बड़ा मसला जिहड़ा पिछले कुछ महीनों तो चर्चा में सी, एक टेंडर घोटाला जिहड़ा उत्थे दा जिस खेत्र दा मैं जिक्र कर रहा रामपुर हाट उत्थों दी डिवेलपमेंट अथॉरिटी का, वो कहिंदा मेरे उस टेंडर घोटाले च कोई लेना देना ही नहीं, मेरी भूमिका ही नहीं, मैनू बदनाम किया जा रहा। तो उन्होंने अपने खुदकशी पत्र च इस गल का जिक्र किया कि मेरी मौत लई कोई भी नहीं जिम्मेवार। ते राजनीति विच आउण ते कहिंदे मैं अफसोस प्रकट करता है। सो मैं समझदा कि सारे कासे च जिथे किसी व्यक्ति का चले जाना बहुत वड्डी दुखदाई खबर है,
1: बिल्कुल सर,
0: एक लीडर का पंज बार का विधायक उत्थे आ जिहड़ा शब्द लिख के गए ना कि राजनीति विच आउण ते मैं अफसोस प्रकट करता है, वह पत्र भी डूंगे इशारे करता है। बाकी सियासत होनी लाजमी है, सियासत शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जिहड़े अभिषेक बैनर्जी, वह कहिंदे जी एक इमानदार व्यक्ति सी, एक चंगे व्यक्ति सी, उन्होंने बदनाम करन दा जतन किया जा रहा सी, इस तो गल तो दुखी होकर वह खुदकुशी करके पत्र दे विच जिथे ये गल है, तो उन्होंने तो भाई इशारा अपनी पार्टी के कार्यां का भी किया। तो एक कह सकते कि एक चंगा आगू अज इथों के सियासी ताने बाने तो दुखी होके खुदकुशी करके।
1: जी रमेश जी, बहुत अफसोस होया इस खबर बारे सुन के, क्योंकि कोई ना कोई हल जो है जिंदगी लभ ही पैंदा, तो यही सोच मेरे ख्याल जो रखते तो अज होंगे। रमेश जी इस दे नाल ही जी समा चलो हुण खबरां दा असी इत्थे ब्रेक का समा लै लीए जी, निके जी ब्रेक तो बाद मिलते हैं अगलिया खबरां दे लई, ते नाल ही फिर साडे स्रोते सानू कॉल कर सकते ने जी, नंबर तुसी नोट करना 905-673-3337 90567-3337 जी, तुसी नोट बिल्कुल रखना, प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल जी तुसी बने रहना।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, या पहुंचो 10970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री, हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है दोनों लोकेशंस ते, फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम, ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299।
3: Let's go to the X. The CNE Grand 5050 is on now. Get your tickets today at cnef5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.

कून तहुन इंतजार खत्म। ब्रैम्पटन विच खुल गया है लिवाना वेलनेस स्पा। साडे तजर्बेकार अते प्रोफेशनल थेरेपिस्ट्स 100% हाइजीन एनवायरनमेंट अते एडवांस्ड इक्विपमेंट्स दे नाल तुहाडी सेवा लई हाजिर हन। साडियां खास सर्विसेज रिलैक्सिंग अते मसाज थेरेपी, प्रीनेटल अते पोस्टनेटल, ग्लोइंग हाइड्रा फेशियल, लेजर हेयर रिमूवल अते बॉडी कंटूरिंग। अते हां, इंश्योरेंस बेनिफिट्स वाले ग्राहकां लई डायरेक्ट बिलिंग दी खास सुविधा भी उपलब्ध है। ता देर किस गल दी, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। पता 534 पार्कहर्स्ट स्क्वायर, ब्रैम्पटन। फोन नंबर 416-811-5385। लिवाना वेलनेस स्पा, जो रखे तुहाडी सेहत अते

0: 7909080 जी तेजपाल जी लई ग्लोबल कंफर्ट एयर तो एसी फर्नेस तुसी रिपेयर करवाउणा या फिर नवा लगवाउणा ते $1800 दी रिबेट बारे भी जानकारी तुसी इन्हां पासों जरूर लवो जी। रमेश जी इस दे नाल ही जी जाण दा समां ते मैं तुहाडा खास धन्नवाद करदी हां जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुसी समां जो अपना कीमती कढ के साडे नाल प्रोग्राम राही जो खबरां सांझियां कीतियां, बहुत बहुत धन्नवाद
1: जी, बहुत बहुत मेहरबानी।
0: ते सारे ही कॉलर साहिबान दा भी मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, तुसी भी अपना कीमती समां कढ के जी साडे नाल रोजाना जुड़दे हो ते बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे समय दे लई। ते इस दे नाल ही अज दे दिन दीआं सारिआं नूं जी ढेर सारिआं बेस्ट विशेस, तुहाडा समां वधिया बीते। मैनूं रुपिंदर कौर नूं दिओ इत्थे ही इजाजत जी, हसते वसते रहना, सत श्री अकाल।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लबदांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल होंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं ले सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियलिटी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विच हो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next hot deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
4: जी दोस्तों, राम्स पंजाबी वीकेंड शो का समा हुण इत्थे समाप्त है। आपां एक स्टेशन आईडी लैने आ जी, उस तो बाद फिर जुड़दे आ प्रोग्राम नजरिए दे विच।
5: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो। असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
6: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੇਡੀਓ ਨਜ਼ਰੀਆ

0: गो 647 964 85 73 647 सतबीर जी का नंबर आ इन्हों को फिजिकल टिकटा ने इन्हों ने तुम हैंडओवर कर देनिया ने 647 964 85 73 6479648573 नंबर मैं रिपीट कर रहा जी तुसी इन्हों टेक्सट मैसेज कर दो चाहे कॉल कर दो 647 964 85 73 6479648573 647 964 85 73 647 964 85 73 6479648573 आ रहे ने जी मैसेज तो कॉल आन लगी तेनू
1: हां जी ऑन द गो कॉल दे मैसेज आ रहे हैं जी
0: थैंक यू सो मच जी
1: मैसेजेस भी आ रहे हैं
0: वेरी गुड सो मिलते हैं शो दे उत्ते 30 अगस्त रल मिलके भंगड़े पाने बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: थैंक यू वेरी मच जी

0: ਹੱਡ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi bhi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-6
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ਤੇ
4: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-455-3381 416-457-3381
7: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ